0: मेरो करोड़ रुपया रो धन में 6 लाख में उसको आदिन क्यों?
1: As developers acquire more land in the villages, they also need access routes, roads that cut through villages and farmland.
0: ये रास्ता है तो अपनी धरी तक ही है, ता ये रास्ता बंद कर दिया गया हूँ। रास्ता बंद कर दिया तो खेत जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा, तो जाएगा कहाँ से? मैं इसलिए नहीं दिया, ये देता है 15,625 रुपया बीघे का साल का किराया देता है इस जमीन का।
1: As more land is acquired, the remaining farmers begin to feel the pressure to give up theirs.
0: धीरे धीरे हमारी जमीन है नहीं, जो कि सारी लेने की कोशिश करता है, मान लो कहीं ने ठगा के, कहीं ने डरा के, कहीं ने धमका के, मान लो ऐसे करके सारा की जमीन लेनी चाहता है। अब ये सिर्फ मारा एक खेत बचा है, मान लो
1: Raman Lal Chowdhury is Kishanji's nephew and neighbor. Unlike his uncle, he agreed to lease his 6-acre land to a solar developer.
2: ये मेरी जमीन है, मेरे दादा की जमीन थी। कृष्णा राम के पास पड़ोसी हूँ मैं, ताऊ का लड़का हूँ। ये कंपनी वाला आया, हमारे को कृष्णा राम ने बहुत मना करा था, मेरे को बोला काम दे देंगे, मैं आपको नौकरी दे देंगे। 3 जनों को नौकरी नहीं दी, प्लांट में काम ही नहीं दिया, जमीन ले ली मेरी।
1: Raman took the deal of leasing the land for about $160 a year. It is far less than what a farming family of 5 might spend in a month. His current income is also significantly lower than what the land once yielded.
3: On the ground, we have been seeing the local youth get quick money by giving their land on lease or selling their land. Within 3-4 years, all gone. And now they're putting barbed wire on the fencing.
1: Fences on Raman's land too went up.
2: अब अंदर पग ही नहीं देने देता है। ये डानी है, हमारी डानी पड़ी है। ये कृष्णा राम की बात मान लेते तो नहीं देते, सही रहते।
1: Looking back, Raman says he might have been better off continuing to farm.

0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारा लाइट डानी में नहीं, मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट वजह से हमारे फसल नहीं ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach.

0: In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
1: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है
2: दूर जाके लाना पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है
0: In many drought prone parts of India, water is still delivered by tanker trucks, a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry.
1: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है वो भी तीसरा रहता है
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
2: हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं यहाँ पर नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए
0: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.

0: They believe the trees protect life in the desert.
1: और कोई भी शुभ कार्य में इसके लूंग का प्रयोग करते हैं इसे हम काटने नहीं देंगे ये हमारी
0: Among the Bishnoi, the Kadri tree holds cultural and spiritual significance. The tree is central to their traditions and daily life.
2: दनगे काम आवे गाय भैंस बकरी भेड़ खावे और बड़ी तम काम आवे पानी तातो करा चूल्हे में जलावे ने और घणी काम आवे और ऐसा आंगरी 3000 रुपया किलो खांगरी जाए
0: But for solar developers, trees can pose a challenge. Their shade can reduce the amount of sunlight reaching the panels.
1: सूरज प्लेट लगाने वाला मार खेजड़ी काट रहा है यूं मन बहुत बड़ा दुख हुआ है यूं हमारा नस काटने बराबर आया हो

0: Farmers like Ram Dayal Chowdhury are seeing that firsthand.
1: ये प्रधान मंत्री कुसुम योजना है इनमें हमारे को लाभ मिलते हैं छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है मेरे पास 15 बीघा जमीन है उसमें मैंने ये सोलर पंप लगाया हुआ है
0: Ram receives subsidies to install solar pumps for irrigation, reducing his dependence on unreliable electricity.
1: इसी फायदे की वजह से मैंने ये लगाया है ये 10 पंप और 10 किलोवाट का सोलर पंप है करीब इनकी लागत 4.5 लाख रुपया से लगवाया है ये इनसे फायदा हमारे को होता है ये मतलब बिजली नहीं लगती है बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है इनका एक बार पैसा लगा हमारे को
0: Instead of monthly bills, it's a one-time investment. And over time, that has made a difference.
1: वो फायदा हुआ हमारे को अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है ये 10 HP की मोटर चल रही है हमारे यहाँ इनका कोई खर्चा उर्चा नहीं है ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू
0: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
1: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है ये हमारे पहले लाइट से चलता था लाइट में हमारे वो परेशानी ज्यादा होती थी वो 6 घंटा लाइट देते थे कभी कटौती कर देते थे कभी 4 घंटा भी कर देते थे अब हमारे को मतलब 14 घंटा गर्मी में 12-14 घंटा तक सोलर पंप से लाइट चलती है हमारे को डबल फायदा हो गया
0: For farmers like Ram, solar power has become a practical solution.

0: हेलो, बात कर रहे हैं?
1: आप कौन है?
2: The detectives have the identities of the blackmailers. What they need now is an address.
0: सर, मैं से बात कर रही हूँ. आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं वाले एड्रेस में, लेकिन एड्रेस ट्रेसेबल नहीं है और कुरियर पर्सन खड़ा भी है वहाँ पे. अब अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए ताकि पर्सन डिलीवर कर सके. सर, डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है सर, नहीं तो रिटर्न हो जाएंगे वो. तो अल्टरनेट एड्रेस आप दे दीजिए सर.
2: With no address to go on, the team needs to improvise. Naaman discusses options with his team.
3: अब क्योंकि उसका घर नहीं मिल रहा, सारे एड्रेसेस पोस्ट ऑफिस में जाके चेक कर लिया है, इन्होंने शायद एड्रेसेस ही अपने डाटाबेस में गलत मेंशन किए हुए हैं. तो हमें इसका घर तो ट्रेस हुआ नहीं. सब्जी मंडी की आपने लोकेशन दी थी, सब्जी मंडी में भी जाकर उन्होंने पूरी टीम ने चेक कर लिया, सब्जी मंडी में भी कोई दिखा नहीं कहीं पर ये पर्सन. तो अब ये मैंने बात क्लाइंट को बता भी दी है. तो अब क्लाइंट ने क्या किया है कि अब हमारे पास एक ही तरीका था, जो आप जैसा आपने फ़ोन पर भी सजेस्ट किया था मुझे कि भाई इसको बेट डालनी पड़ेगी. अब
2: Naaman and Nidhi's detective agency originally investigated corporate espionage. But in a post-pandemic world, the growing market isn't corporate, but the business of love.
3: Out of all the cases that we undertake, pre-matrimonial cases is the maximum number of cases that we get. Our company used to book, when we started, around 2 to 3 cases in a month. Right now we are doing 150, 200 cases in a month.
2: In India, marriage is more than a bond between two people. It's a union between families. More than 90% of marriages in India are arranged. Love marriages, on the other hand, are typically seen as an act of rebellion. Unfamiliar with this relatively recent approach, parents are turning to detectives for help. Nitesh and Vandana Sethi are concerned about their daughter, who has fallen in love.
3: किसी भी तरीके शादी करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम जो है उनके सिर्फ नेगेटिव्स को ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि आप डॉटर को कन्विंस कर सकें दैट ही इज नॉट द राइट बॉय फॉर हर.
2: बैकग्राउंड चेक्स लाइक प्रीवियस और करंट मैरिजेस, अफेयर्स, मेडिकल हिस्ट्री, इवन पर्सनल इंडल्जेंसेस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंक्लूडेड इन द ऑडिट.
3: कि हम लड़के को फिजिकली फॉलो करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, जस्ट इन केस अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में पाया जाता है, जैसे कि स्मोक करते हुए, ड्रिंक करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, या फिर किसी और गर्ल से अगर वो मिल रहा है, किसी बैड हैबिट में है, तो किसी रॉन्ग कंपनी में है, तो हम उस केस में उसे कंप्लीट वीडियोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं. क्या होता है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डॉटर के लिए भी नेगेटिव हो. बेसिकली ये केस है कि जिसमें देयर डॉटर हैज़ फॉलन इन टू लव विद अ बॉय एंड द फैमिली इज अ वेरी रिच फैमिली, राइट, एंड वेरी दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड नाउ द डॉटर हैज़ फॉलन टू लव विद अ बॉय हु डज नथिंग एट ऑल एंड दे हैव हर्ड वेरी रॉन्ग थिंग्स अबाउट द बॉय. दे हैव ट्राई टू कन्विंस देयर डॉटर बट शी इज नॉट रेडी टू एग्री टू एनी थिंग. पीपल स्टार्ट यू नो इंटीग्रेटिंग एंड सेविंग मनी फॉर दिस फॉर हिज मैरिज right from the start, from the time the child is born, and they have got a lot of dreams attached to this, you know, children's wedding. But now once the children have decided to go ahead with such a kind of marriage, they feel that what have we earned for. We cannot predict the outcome of any case, but as far as I could hear them, I found out, you know, the boy to be a little fishy.
2: Meanwhile, the detectives begin a digital forensic investigation and assemble a dossier on the unsuspecting young man.
4: Another part that I'll be covering is voter ID of this individual that will help us to check the address that is mentioned in the form if he is residing there along with his family. And yes, in this case, we have his details available along with his family members is also further details available after we download the electoral roll, we have the data.
2: They discover the boy has 2 separate registered residential addresses. Other red flags are raised.
4: It's a strike of entity. So hinting towards that he was associated with this entity, but no longer now. So question mark on the job profile. What kind of work he's doing? Because if he's saying that if he's working, he's earning sufficient. So now question comes, where is he earning?
2: It's time to gather intelligence on the ground.
0: Or something, ki aap easily march ho sako.
2: Nidhi heads out with

0: trainee detective Kajol.
1: तो जैसे field verification के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनके neighbours या फिर relatives या फिर friends से हम लोग बात करके और details निकाल सकते हैं. तो हम लोग को investigation और easy पड़ेगा. और जैसे कि मैं

0: घंटे पहले आके देखना है कि कहाँ आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। जैसे अब ये घर है, ये कॉर्नर हाउस है, आप यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पे चाय वाला है, यू कैन इजीली स्टैंड यहाँ पे, दो घंटे तीन घंटे भी रहोगे कोई नोटिस नहीं करेगा। सेकेंड थिंग ये देखना है कि उस घर में या उसके बराबर वाले घर में CCTV तो नहीं है। आजकल मोस्टली हाउसेज में CCTV है, तो अगर CCTV है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि CCTV के एक्सेस में नहीं आना चाहिए, आपकी पोजीशन वहाँ हो कि CCTV आपको कैप्चर ना कर सके।
1: It's time for the rookie detective to put her skills to the test.
2: नमस्ते, मैं काजोल बैंक से हूँ, लोन जी मैम, आपका कोई लोन नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ। आपके पास में कोई रहते हैं, उन्होंने लोन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए था। तो यहाँ पे रहते ही नहीं है,
3: मम्मी पापा तो उनके यही रहते हैं।
2: और उनकी मदर?
3: मदर तो उनकी हाउसवाइफ है।
2: ओके, उनकी, हाँ उनकी मदर गारंटर है। समझी नहीं मैं।
3: ओके, वो 8 साल हो गए हमने। अब जो है सेकंड मॉम।
2: हाँ, उनका नाम क्या है?
3: उनका नाम है
2: अब
3: तो पापा से भी नहीं बनती।
2: अब पापा से भी रिलेशन अच्छे नहीं है?
3: अच्छे नहीं है, साल दो साल में एक दो बार आ गया। बाहर गली में तो लोग नहीं रहता है, हमारा गड्ढी में जाता रहता है, मतलब घूमता फिरता रहता है।
2: कोई बात नहीं मैडम, थैंक यू डिटेल्स देने के लिए, आपके समय के लिए धन्यवाद।
1: Parents can choose how deep they want to dig. Most start with a $3,000 package. Unearthing deeper secrets costs more.
4: Ask anyone. So love and marriage are two different things for people. Even you know, people who have been into relationship for 8 years, 10 years time, they come to us to get their partners energy because now they're entering into married relationship, right? So which I think is very prudent, right? Everybody should get background checks done.
0: I remember jab humne initially business start kiya tha, talking about 20 years 25 years back, us time arranged marriage ya love marriage ke liye koi proposal hamare se aata tha check ke liye, to unke words ye hote the ki I know it's not good, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा और मैं बैकग्राउंड चेक करा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट, क्योंकि कुछ सस्पिशन है, कुछ डाउट्स हैं। बट अभी इट्स वेरी चेंज, एवरीबडी वॉन्ट्स कि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, इट इज मस्ट।
1: व्हाइल लव मैरिजेस रिप्रेजेंट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल यूनियंस, इट इज अ ग्रोइंग फिनोमेनन, सो लव ऑडिटिंग हैज आल्सो बिकम अ ग्रोइंग बिजनेस।

0: ग्रेजुएट 90,000 पर मंथ कमाता है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
1: In the halls of this temple, an ancient tradition is taking a leaf from stock market trading floors. On offer is a low-cost community matchmaking service for Hindu families.
0: Manglik ladka 33 saal 5/11 May 92 BTech PGDM service MNC 9 lakh ka package.
1: Interested parents of prospective brides and grooms come together to see if the match is right. As rural Indians migrate to urban centers, old village connections are lost. Settings like these have become a trusted way for parents to find the right partner for their child.
2: NRI ladki UK London mein working hai. Sonam Sharma Punjabi family June 91 born 34 saal kad 5 feet 6 BTech in computer science 80,000 pound Great Britain pound salana package hai koi sajjan baat karna chahta hai koi sajjan
3: We announced Mr. So-and-so. Any girl interested in that boy? They look whatever. If there's nobody interested, then we pass. The next kid. Same way, left side. People are meeting and we haven't seen anything wrong, obnoxious, nothing. We are very simple here and we help people to get the kids registered.
4: मुझे दो एक महीने हो गए यहाँ आते हुए और बेटे के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ रिश्ता तो अच्छी जगह है यहाँ पर आपस में सब मिलते हैं एक दूसरे को समझते हैं पहचान लेते हैं देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छी बात तो यही है पुराने ज़माने से अलग तो नहीं है थोड़ा सा तरीका बदल गया अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा है अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा कल्चर है लव मैरिज के अंदर तो जब प्यार किसी से हो गया, लव हो गया, तो उसके बाद तो कोई कल्चर ही नहीं है।
1: But while tradition offers a safety net, stepping into the shadows can lead to a trap. A blackmailer is holding a prominent businessman to ransom. He has a compromising video of the businessman. In exchange for this video, he wants $200,000 in cash. The detectives use a delaying tactic. They deliberately miss the deadline.
5: No. Don't raja. मेरे को अभी एक एक घंटे तक तूने.
6: तूने होते होते राजा. अरे तू. बैठे. सोगी सो जा. Blackmailer.
5: रात में सुबह में जहाँ मर्जी मिल लेंगे. Payment आएगी मेरे पास 100% आएगी.
1: The businessman gets the blackmailer to agree to a reduced sum of $27,000. The detectives have just 2 days to find the extortionist. Otherwise, the victim will have to cough up the cash. The clock is ticking. The blackmailer's wife is the businessman's former office manager. She was in charge of collecting payments. The enterprising employee diverted company funds into her own bank account and was caught red-handed. She then makes a proposition.
7: Now she started crying, right? That, you know, my husband beats me up. He, you know, he abuses me at home. You know, he needs 15,000 rupees every month from me. What do I do? Like, you know, and I cannot return the money back to you. But, you know, I'm ready to do anything that you want me to do for you.
1: The businessman thought he was being compensated for his loss with a fling. But she was two steps ahead. While he was booking a hotel room, she plotted.
7: And this time when she met him there, she asked her client to remove his clothes. Right? Once he removed his clothes, she took out his mobile and started shooting our client.
8: 5 addresses of a subject.
1: If the video goes public, it would destroy his marriage and career. The detectives need an address.
9: What have you identified?
1: So far, nothing.
10: I tell you. उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ये सोच रहा है कि वल्नरेबल टारगेट है 65 ईयर ओल्ड पर्सन है और अब ये फंसा हुआ है कर तो कुछ सकता नहीं है उसकी वाइफ को पता है कि इसकी वाइफ है इसके बच्चे हैं उसको ये मालूम है कि अगर इसने कुछ भी किया तो ये ही विल बी इन अ बिगर सूप सो लेट अस से इफ देयर इज एनी क्राइसिस एट ऑल इट बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स वी आर यू नो डीलिंग विद द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पीपल वी आर डीलिंग विद डार्क थिंग्स ऑल द टाइम
1: While the team hunts for the blackmailers, a different kind of tragedy plays out. A housewife, married for 12 years, has just made a startling discovery about her husband.
11: Yeah, hi. Please tell me. After 12 years of marriage,
12: Daughter?
11: Yeah. So how come you have a daughter?
12: I'm 5 years.
11: Oh, okay.
12: But now when I realize this, I'm thinking I cannot live with this lie. I have to end this marriage.
1: To get custody of a daughter and parental support, she needs more than just suspicion. She needs evidence, admissible, undeniable proof. The team decide to hide a listening device in the family car.
10: Brother, जो हमें कार में बग यूज़ करना है ना वो ये जी एस एम बग यूज़ करेंगे ठीक है और इसका ना मुझे बैटरी साइज इंक्रीज चाहिए ठीक है क्योंकि मुझे चाहिए इसमें कम से कम 3 दिन का बैटरी ठीक है तो ताकि वो जो ना उसको रिप्लेस अगर करे 3 दिन में काफ़ी रिकॉर्डिंग आ जाती है राइट हमें क्लाइंट को देने से पहले हमें टेस्ट करना है तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं देने से पहले अपनी गाड़ी में लगाए ज़रूर कुछ टेस्ट करते हैं खुद की हाउ इज इट वर्किंग How's functioning?
13: बस देखना स्लाइड ना हो स्लाइड आराम से हो जाए
14: तो अगर हम लीगली देखें सो वी आर सेफ क्योंकि उनकी अपनी कार है अपनी कार में वो खुद लगा रही हैं सो हम और उन्हीं को एक्सेस दे रहे हैं वो खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे
15: और हम जब भी बग प्लेस करते हैं क्लाइंट की कार में और क्लाइंट की प्रेजेंस में ही करते हैं नॉट इन हर एब्सेंस सो साथ में है तभी हम प्लेस कर रहे हैं सो इन दिस केस हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट्स हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी बग प्लेस करना होगा

0: The detectives have failed to get the address of the elusive blackmailer. With less than 24 hours left, they are running out of options. Their best bet is to apprehend him at the cash drop location. But with a sting operation in a public space, anything can happen. The location is set. If the blackmailer senses a trap, the compromising video will go public.
1: हाँ ताकि ज़्यादा अगर हंगामा मचता भी है वहाँ पे तो वो उसके हम टेक केयर कर सके और एक बार वो पकड़ा गया तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा और सिंपल सी बात है आपने कोई गलती थोड़ी करी आप हम कोशिश लेकिन फिर भी हमारी यही रहेगी कि ऑफिस में पहुंचने से पहले ही उसको नीचे से ही हम लोग उठा लें ठीक है टीम चारों ओर स्प्रेड होगी ठीक है तो हमने पूरी उसकी प्लानिंग करके रखी हुई है तो आप हाँ हम जो है ना उसको कोशिश यही करेंगे उसको नीचे से ही उठा लें
0: The detective agency has roped in the help of the police, who will conduct the raid.
2: Strategy के अनुसार हमें से कहीं बाहर लेना है।
3: Office सही जगह है, वहाँ भीड़ भाड़ है, हमारे आदमी छिप जाएंगे। और अगर इसने कहीं अकेले में बुला लिया ना, चेंज कर लिया, तो हम फंस जाएंगे।
0: But as the drop time approaches, the tracking signal begins to behave erratically. The phone is moving. But not towards the drop site. Could it be a decoy? Time's running out. The team must push forward with the sting. The police are planning to apprehend the blackmailer as soon as they can confirm his identity. The trap is in place. The police are in position. Now, they just need the target to walk into their crosshairs. The detectives wait in the background. While the police conduct the operation. The raid is a success.
4: But the problem is this ki usne apna phone apni wife ko diya hua tha. Right? Aur hum subah se usko trace karte hain uski location. तो हमें लगा कि ये कहीं पे दिल्ली में roam around कर रहा है पता नहीं he'll come for collection of the payment or not. और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ही केम फॉर द कलेक्शन ऑफ पेमेंट विदाउट हिज मोबाइल एंड हिज मोबाइल वाज रोमिंग अराउंड समवेयर एल्स हिज वाइफ इज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर वाइफ जो है अभी तक किसी भी डेस्टिनेशन पहुंची नहीं है तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसको कहां से पिक कहां से करें उसकी वाइफ को या ही इज नॉट विद एनी मटीरियल राइट नाउ वी हैव टू कलेक्ट द मटीरियल नाउ तो वो मटीरियल कलेक्ट करने के लिए हमें जो है वो उसकी वाइफ को पिकअप करने आना पड़ेगा
0: द पुलिस हैव द हस्बैंड इन कस्टडी बट नॉट द इनक्रिमिनेटिंग वीडियो That footage is in his phone with his wife, who is still at large. They bring in her brother to help convince her to surrender.
1: So basically, अभी क्या है कि it's about to be solved now. तो अभी क्या हुआ है कि his wife has come inside. उसके पुलिस ने pressurize करके उसे सारे उसके laptops, memory cards, mobile phones मंगा लिए हैं. She knew that she has got struck. ठीक है तो obviously you know she is all under pressure कि they would also get arrested. It's not that she can file a fake case now and she'll be left. तो अब जो है obviously उसे against आएगा तो
2: सबसे बड़ा challenging तो यही था कि भाई एक तो हम extortionist को पकड़ लें, दूसरा जो evidences जो भी हो जिसके basis पे वो blackmail कर रहे थे, वो सारे हम लेके और वो recover हो जाए बस।
1: पहले smart game play किया, she was roaming around. तो इस वजह से हम उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आके तो ट्रेस करके वहाँ से उसको उठा नहीं पाए वो सबसे चीज़ चैलेंजिंग लगी हाँ। और फिर जब वो आ गई थी और एकदम से आगे उसने हंगामा मचा दिया मैं रेबर केस डाल दूंगी पीछे से किसी ने उसको समझाया होगा तो उसको इंटेंसिटी नहीं पता थी सिचुएशन की वो आते ऐसे बोलने लगी तो हमें लगा कि कोई और बहुत बड़ा हंगामा ना हो जाए बट जब उसने रियलाइज़ किया कि इंटेंसिटी इस केस से कितनी ज़बरदस्त है और जब उसके हस्बैंड ने भी उसको बताया उसके हस्बैंड के भाई ने भी उसको बताया तो फिर वो एकदम से सबसाइड हो गई ना तो अब वो रो रहे हैं आप तो दोनों
2: नहीं ठीक है हमारे को भी यही डर था कि कहीं वो जो लेडी है वो एविडेंसेस को कहीं छुपा दे या वो कर दे तो वो अल्टीमेटली उनको हमने पकड़ा तो उसे मतलब मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड
0: The compromising video is secured.

0: What makes Rajasthan attractive for solar power is straightforward. Abundant land and some of the highest solar radiation in India. But as solar farms expand closer to villages, the land becomes a point of negotiation. Developers approach landowners, often through brokers, offering either a full buyout or a 30-year lease. Kishanji says he's been approached before. He refused to sell or lease them. But his decision to hold on to his land is not only for what it means to him, it is economic as well.
1: मेरी फसल होती है बीघे में मतलब 50,000 की तो 40 बीघा जमीन है 20 लाख की मेरी फसल होती है इसमें
2: बाजार से गुरु
1: यह देता है साल का 6 लाख रुपया तो मैं क्यों दूं इसको दूसरी बात मैं आज बेचूं मेरी जमीन है तो रेट चल रहा है 3 लाख रुपया बीघे का यहां रेट चल रहा है तो भाई रकम मान लो मैं उठा के 1 करोड़ 20 लाख रुपया बनता है मेरी खेत का इसका मेरो करोड़ रुपया रो धन में 6 लाख

0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारी लाइट डानी नहीं मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट वजह से हमारे फसल नहीं ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach. In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
2: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है।
3: दूर जाके लाना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है।
0: In many drought-prone parts of India, water is still delivered by tanker trucks, a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry.
2: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है। गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है, वो भी तीसरा रहता है।
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
3: हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए।
0: In the Thar Desert, where water

0: Malaysia once welcomed the Rohingya. Now, resentment is rising.
1: Saya tak nak satu hari ini negara saya dijajah pula oleh puan Rohingya ni.
2: The hatred has been translated into actions.
0: As humanitarian ideals collide with growing opposition, Malaysia faces a dilemma. What should it do with the Rohingya?
3: Anwar inherited thousands of Rohingyas that are already here. What can he do?
0: Insight Thursday on CNA.
4: CNA wins at the Cannes Corporate Media and TV Awards 2026 with 2 gold, 2 silver and the prestigious Blue Dolphin TV Network of the Year Award. Recognised on the global stage for trusted news, excellence in journalism and compelling documentaries. CNA. Understand Asia.
5: Rajasthan's solar expansion is transforming the desert landscape. The rapid growth has raised difficult questions about land for some. At the same time, solar is also bringing clear benefits. Farmers like Ram Dayal Chowdhury are seeing that firsthand.
6: ये प्रधान मंत्री कुसुम योजना है इनमें हमारे को लाभ मिलते हैं छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है मेरे पास 15 बीघा जमीन है उसमें मैंने ये सोलर पंप लगाया हुआ है
5: Ram receives subsidies to install solar pumps for irrigation, reducing his dependence on unreliable electricity.
6: इसी फायदे की वजह से मैंने ये लगाया है। ये 10 पंप और 10 किलोवाट का सोलर पंप है। करीब इनकी लागत 4.5 लाख रुपया से लगवाया है ये। इनसे फायदा हमारे को होता है ये मतलब बिजली नहीं लगती है बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है इनका एक बार पैसा लगा हमारे को।
5: Instead of monthly bills, it's a one-time investment. And over time, that has made a difference.
6: वो फायदा हुआ हमारे को। अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है। ये 10 से

0: एचपी की मोटर चल रही है हमारे यहाँ, इनका कोई खर्चा उर्चा नहीं है। ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू।
1: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
0: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है। ये हमारे पहले लाइट से चलता था, लाइट में हमारे वो परेशानी ज्यादा होती थी। वो 6 घंटा लाइट देते थे, कभी कटौती कर देते थे, कभी 4 घंटा भी कर देते थे। अब हमारे को मतलब 14 घंटा गर्मी में 12-14 घंटा तक सोलर पंप से लाइट चलती है, हमारे को डबल फायदा हो गया।
1: For farmers like Ram, solar power has become a practical solution.